मुख लेंगे साहित्यी लॉयड रेगो अनी रोशन क्रास्ता, संगीत विनिल वेगस, गायले ले जावना साथ प्रजुत डेसा, गीत चिंतनान एताई।

0: ऑल द बेस्ट नीना पसंद जाओ बगैर एंड पिता
1: थैंक यू अंकल सच्चू इन अनांडला उन दो क्रिकेट तो प्रैक्टिस आउट पूरा बुर्दो जॉब ज्वाइन आलावा पोला इन इवनिंग मरे पड़चू